0: शीतल खन्ना ने चेक क्या पास कर दिया, तुम तो शाम से पैसे खर्च करते जा रहे हो।
1: वो पैसे थे ही खर्च करने के लिए।
0: क्या मतलब?
1: नहीं, मेरा मतलब कि वो, मैं बहुत खुश हूँ आज।
0: खुश तो हो, लेकिन तुम मुझे कुछ कहने वाले थे ना।
1: हाँ, मैं सोच रहा था तुम ऐसी अच्छी लगती हो, मोटी मत होना।
0: वो तो डॉक्टर भी कहते हैं।
1: कहते ना, मुझे मालूम था।
0: क्या सिर्फ ये बात ही जो तुम मुझे शाम से कहने वाले थे?
1: नहीं मैम, वो माँ है ना, माँ, माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती है।
0: बस और कुछ नहीं कहना।
1: नहीं वो कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन
0: शर्म आती है।
1: नहीं शर्म की क्या बात है, हम दिल में तो कोई बात छुपाते ही नहीं, जो कुछ बोलना होता है वो तो हम मुंह पे बोल देते हैं।
0: फिर बोलो ना।
1: शर्म आती है।
0: शर्म आती है। अच्छा काम करते हैं। हाँ मैं यहाँ छुप के खड़ी हो जाती हूँ, हाँ, और तुम यहाँ खड़े हो जाओ और तुम्हें जो कुछ भी बोलना है बोल दो। ओके
1: ओके। सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगे तो बेशक उसी तरह से तुम घर चली जाना।
0: okay.
1: अनीता, मैंने आज तक हमेशा तुमसे झूठ बोला है, लेकिन आज दुनिया में सिर्फ मेरी माँ है, मुझे उसकी कसम, आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा वो झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। अनीता, तुम समझती हो मैं शीतल से प्यार करता हूं ना? नहीं, मेरी जिंदगी में शीतल नाम की लड़की कोई थी ही नहीं, मैंने तो आज ही पहली बार उसकी सूरत देखी है। मेरे दिल ने जाने अनजाने में जिसे चाहा है, जिसे प्यार किया है, वो तुम हो अनीता। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, सिर्फ तुम्हें। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा तुम्हें अनीता? अनीता, अनीता, अनीता,